इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: सिग्नापुर का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर पर। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी दोस्तों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही दिल में एक सुकून महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। उन्होंने अपने सुरीले गानों से हमेशा हमें बहलाया है और आज हम उनके सफर को सुरों के जरिए याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले पड़ाव से।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश तब पूर्वी बंगाल में हुआ था। वह बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आई जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही सुमन को संगीत का शौक था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और शंकर राव सुप्रे और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत का गहन अध्ययन किया। 1954 में सुमन ने अपनी गायन करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी मंगू और पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल था, जिसके बाद उनकी पहचान बनी।

सुमन की आवाज को मधुरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को लता मंगेशकर के सम्मान माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे न तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है और तुमसे ही हसी मुलाकात हो गई। इन गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुमन को अक्सर लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती थी। उनके गायन का तरीका और आवाज की टोन लता जी के सम्मान थी, जिससे उन्हें दूसरी लता भी कहा गया। सुमन ने एसडी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनके साथ की गई संगीत रचनाएं आज भी सराही जाती है।

सुमन की गायन शैली शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, लेकिन वे अन्य शैलियों में भी निपुण थी। उनकी गायकी में एक सरलता और सहजता थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुमन ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

सुमन कल्याणपुर का विवाह राम कल्याणपुर से हुआ था, जो कि एक व्यवसायी थी। वह अपने पारिवारिक जीवन और संगीत करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही। सुमन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता 1950 से 1970 के दशक में अपने चरम पर थी, लेकिन वे 1980 के दशक में भी गाती रही।

आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अभी जारी है कार्यक्रम सुनहरे बाल। 1980 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर एक शांत और साधारण जीवन चुना। फिल्मों के अलावा सुमन कल्याणपुर ने रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लाइव परफॉर्मेंस दी। वह संगीत कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही।

सुमन कल्याणपुर ने अपने समकालीन गायकों के बीच भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी सरलता और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें संगीत जगत में एक आदरणीय स्थान दिलाया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और मुंबई में एक शांत जीवन बिता रही है। हाल के वर्षों में वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दी है और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। उनके फैंस उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अविस्मरणीय गीतों के लिए याद करते हैं। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उन्हें कई बार मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की हकदार थी, फिर भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी खास जगह है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के गाने आज भी हमारे दिलों में एक नया रंग भर देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपने सुरों से हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें प्यार सिखाया और जिंदगी की हर पल को खूबसूरत बनाया, चाहे वो उनके सोलो गाने हो या ड्यूट्स। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी है। उनका सफर किताबों के पन्ने जैसा है, जिसमें हर पंक्ति एक याद है। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनकी यादों को ताजा किया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने अपने वक्त दिया और सुमन जी के सुरों का लुत्फ उठाया।

0: की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो।
1: तुमने पुकारा

इसके साथ ही आज का ये खास प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सुर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरीली यादों के साथ खुश रहिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आपने सुना पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर के ऊपर आधारित। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो हमें सिखलाती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा दे देते हैं। तो ऐसी ही कहानी है एक राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। तो एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तो रास्ते में चलते चलते उनके शाही कुर्ते का एक बटन टूट जाता है। जब राजा ने बटन को देखा तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला कर लाएं जो उनके शाही कुर्ते का बटन लगा सके। ये सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी और संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल जाता है। गांव में दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया और दर्जी को कहा गया कि उन्हें राजा के शाही कुर्ते को बटन लगाना है। तो वो दर्जी महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचने के बाद उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन को लगा सकते हैं। दर्जी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुए और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा, इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। ये तो बहुत छोटा सा काम है राजा जी, इसके लिए मैं कोई रकम आपसे वसूल नहीं कर सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे मुझे वो मंजूर है। राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए अपनी इज्जत को और बढ़ाने के लिए उसने आदेश दिया कि दर्जी को 2 गांव दिए जाएं। दर्जी ने सोचा कि कहां तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें

आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वयं रचित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ 90.0 ਮੈਗਾ।

रेडियो विदिस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदिस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के इस रंगमंच पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी के बीच कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ खास पल जिनमें है बात, जज्बात और एक नया नजरिया। मैं हूं किरणी और पेश है कार्यक्रम रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मजबूत बच्चे घर पर बनते हैं। इस बदलती और असुरक्षित होती दुनिया में कुछ ऐसे नियम हैं जो बच्चों को जिंदगी के हुनर की तरह सिखाए पढ़ाए जाने चाहिए। नियम जो बच्चे की सुरक्षा, आत्मविश्वास बढ़ाए और व्यक्तित्व को भीतर से मजबूत करे। हमेशा सच बोलना है सजा के डर के बिना। अक्सर बच्चे झूठ इस डर से बोलते हैं कि सच्चाई बताने पर डांट पड़ेगी। यहाँ पहला नियम बने, सच बोलने पर भरोसा मिलेगा, सजा नहीं। बच्चे को ये महसूस कराए कि उसने कोई गलती की है, लेकिन सच बोलकर उसने बहादुरी दिखाई। सच बोलने पर तुरंत उसे समझाने से बच्चा भाई नहीं ईमानदारी चुनता है। ये नियम उसे जीवन में भी डटकर सच के साथ खड़े रहने का साहस देगा। सवाल करने की आजादी। ये मत पूछो, ये बात बड़े होकर समझोगे, ऐसे जवाब बच्चों की सोचने की ताकत को सीमित कर देते हैं। घर का नियम हो, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो रिश्ते, समाज, लोगों, किसी से भी जुड़ा हो। बच्चा जब सवालों को बिना डर पूछता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और झिझक की जंजीरें टूटती है। सवाल करना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। किस सवाल का जवाब कैसे देना है ये बड़ों को मालूम होना चाहिए। ना मतलब ना, हर रिश्ते में। ये नियम सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, घर के भीतर भी उतना ही लागू हो। अगर बच्चा किसी भी खेल, बात या सुपरिश से असहज महसूस करे, उसकी ना तुरंत माने। जब आप बच्चे के इनकार का सम्मान करेंगे, तभी वो दूसरों से भी वही सम्मान पाने की और साहस पूर्वक अस्वीकृत जताना सीखेगा। ये नियम बच्चों को यौन शोषण, भावनात्मक शोषण या दोस्ती के नाम पर दबाव झेलने से बचा सकता है। किसी को भी छूने की इजाजत ना देना। गुड टच, बैड टच समझाने से आगे बढ़े। नियम साफ हो, बिना अनुमति के कोई किसी को भी छुएगा नहीं, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। ये नियम बच्चों में अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार का एहसास कराता है। साथ ही बड़े भी सतर्क रहते हैं कि बच्चे की सीमाओं का उल्लंघन ना हो। इससे बच्चों में आत्मसम्मान और सुरक्षित सीमाओं की समझ विकसित होती है। मैं नहीं जानता, जानती कहना भी ठीक है। बच्चों को हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। कभी कभी उन्हें बताना कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पता करूंगा, ये भी उन्हें सिखाता है कि इंसान हर बात नहीं जान सकता और सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे उनमें झूठ बोलने की आदत नहीं बनती, बल्कि जिज्ञासा और शोध का हुनर पनपता है। गलती करना अपराध नहीं है। घर का नियम बने, गलती सीखने का मौका है, शर्म का कारण नहीं। बच्चे जब गलती करने के बाद भी समर्थन पाते हैं, तब वे जोखिम उठाते, कुछ नया सीखते और चुनौतियों से जूझने के काबिल बनते हैं। ऐसा माहौल उन्हें भविष्य की असफलताओं से नहीं डरने देता। इन कायदों के फायदे। बच्चों में आत्मसम्मान मजबूत होता है, अपराध बोध और डर का माहौल खत्म होता है, मानसिक सेहत बेहतर रहती है। वे अपनी सीमाएं तय करना सीखते, जिससे यौन शोषण का भावनात्मक शोषण से लड़ पाते हैं। बच्चों की तर्क शक्ति को, उत्सुकता को पंख लगते हैं। उन्हें ना कहना और सुनना आता है, जो वयस्क जीवन में बेहद काम आता है। घर का माहौल अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन बनाता है, जिसमें बच्चे भी सुने और समझे जाते हैं। दोस्तों, कहानियां खत्म होती है, लेकिन उनके जज्बात हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद है कि आज की बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए रंग, एक नए सुर और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

फिल्मी गीतों पे मबनी प्रोग्राम पेश है। धीरे धीरे अब ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम इन बादलों में कहीं खो सा गया है। मैं हूं रमेश मराठा, नमस्ते।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गए, खामोश हो गए, फना हो गए। भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

सी आहट होती है तो दिल कहता है, कहीं वो तो नहीं। इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे, पिछले मौसम की तरह।

खामोशियों को मुअत्तर करती हैं। बस तुम्हारी आवाज सुनते हैं और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आती हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

रफ्ता रफ्ता जिंदगी गुजर गई तन्हा, यूं ही तन्हा तन्हा। साथी थे पर छूट गए, अब ये रह गुजर भी है हमारी ही तरह तन्हा तन्हा। बस हम तलाशते हैं वो साथी जो कभी हमारे अपने थे, सिर्फ

के लिए मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देते, मुझे सहलाते, मुझसे प्यार करते, मुझे अपनी बाहों में लेते, मेरा हाथ थामते। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करते, मुझे अपना समझते, मगर ये हो न सका, ये हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आइए आज बात करते हैं प्यार की। इस संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी प्यार जरूर होता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही पहले प्यार में भी आप ऐसे ही पड़ जाते हैं, बस सोचे समझे बगैर। और उस पहले पहले प्यार के कहने ही क्या, जब आपके लिए हर बात हर चीज का मतलब बदल जाता है, सब कुछ बहुत रुबेला सा नजर आता है। आप हमेशा इन्हीं ख्यालों में रहना चाहते हैं। पहला प्यार बहुत ही नादान, सच्चा और खास होता है, जो बिना कुछ सोचे समझे बस हो जाता है। ये लड़के और लड़की दोनों के दिलों को ऐसा अनुभव से भर देता है जो बयां नहीं किया जा सकता। पहले प्यार का एहसास आप कभी भी नहीं भूल सकते, चाहे उसके बाद आपको फिर किसी और से प्यार हो भी जाए। पर पहले प्यार से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास यादें होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, जिन्हें आप भूलना भी चाहे तो कभी भुला नहीं सकते।

कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो प्यार जीने की वजह बन जाता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो तुम।

कभी कभी ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि ये प्यार ही है या कुछ और। पहला पहला प्यार हो तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। किसी का अच्छा लगना और फिर एक ही मुलाकात में पूरी जिंदगी बन जाना, ये कैसा एहसास है जिसने पूरे जीवन को बदल डाला है। जिंदगी बदल गई है, वो सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं ये प्यार तो नहीं है, बड़ी उलझन है। लेकिन जाने तो कैसे जाने कि आपको प्यार हो गया है। अगर ऐसा ही कुछ एहसास आपके मन में जाग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्यार प्यार और सिर्फ प्यार हो गया है। हर पल मन में कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ कमी सी लगती है। उसका जिक्र छेड़ते ही प्यार की खुशबू आती है, उसका नाम सुनते ही चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है, दिल धड़कने लगता है। पूरी रात इधर उधर करवट बदल बदल कर ही बीत जाती है, नींद आती ही नहीं है, आए भी तो कैसे। आंखें बंद करते ही वो सामने आ जाते हैं और फिर पूरी रात आंखों आंखों में ही कट जाती है। वो साथ है तो जिंदगी हसीन और मौसम खुशनुमा बन जाता है। इसी तरह जिंदगी की ख्वाहिश करने लगती है, आपके चेहरे पर अचानक ही गजब का निखार आ जाता है। दोस्त कहने लगते हैं कुछ तो चक्कर है, लगता है ये प्यार की चमक है, और आप शर्मा कर मुंह छुपा लेते हैं। जी हां, ये पहला प्यार है।

पहले प्यार का होना जितना आसान नहीं होता, ठीक उसी तरह उससे भूलना भी आसान नहीं होता है। वैसे तो प्यार हमेशा खास होता है, लेकिन पहले प्यार के दौरान हुई छोटी सी छोटी घटना भी आपको याद रह जाती है और उससे आप भूल नहीं पाते हैं। दरअसल पहला प्यार आपको उन घटनाओं से परिचय करवाता है जिससे आपने पहले कभी किया ही नहीं है। पहले प्यार के दौरान हुई चीजें अच्छी हो या बुरी, आश्चर्यजनक हो या स्वाभाविक, लेकिन आपको उस दौरान की हर बात याद रहती है। ये सारी चीजें आपके जीवन का एक हिस्सा होता है। जब भी आप अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा अजीब पर बहुत अच्छी लगती हैं। भले ही आपका पहला प्यार 50 साल पहले ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको उस दौरान की एक एक बात याद रह जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इंसान की याददाश्त तेज है, इसलिए उससे हर बात याद रह जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।

अनोखा होता है पहला प्यार। आपने पहले प्यार को अपने जिस व्यक्ति के साथ अनुभव किया था, हो सकता है उन्होंने आपको नई चुनौतियों को लेने और नई चीजों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया हो, जिससे वो आपके यादों में बस गए हो। कुछ मामलों में पहला प्यार भी आपके विभिन्न भौतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है, जो आपके अंदर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं को लाने का कारण हो सकता है। आप जब भी पहली बार प्यार में पड़ते हैं तो आप उस प्यार के सामने अपने आप को कमजोर समझते हैं। अचानक आप किसी और के बारे में इस तरह से परवाह करने लगते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। जब आप प्यार के रोमांटिक अंदाज को अनुभव करते हैं तो आपके अंदर संभावना और उत्साह की नई दुनिया खुल जाती है। प्यार के दौरान महसूस की गई चीजें आपके द्वारा पहले महसूस की गई किसी भी चीज के विपरीत होती है, इसलिए इसका अनोखापन आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है।

जवानी की याद दिलाता है पहला प्यार। आप जब भी पहले प्यार में होते हैं तो उस समय दुनिया की हर चीज आपको अच्छे लगने लगती है, क्योंकि ये समय आपके जीवन का वो समय होता है जब आप पहली पहली बार जवानी की दहलीज पर आकर खड़े होते हैं। पहला प्यार आपके युवा अवस्था की यादों को फिर से वापस ले आता है। अपनी जवानी का प्रतिनिधित्व करने के साथ पहला प्यार आपको उस समय की याद दिलाता है जब आपको संभावनाएं अंततः लगती थी। उस समय आपको जीवन से जुड़ा हर कुछ आपको नया और रोमांचक लगता है। पहला प्यार को याद करते हुए आप इतिहास की अच्छी यादों में चले जाते हैं और अपने आज को ढूंढने लगते हैं।

एक बार ही होता है पहला प्यार। जीवन में किसी घटना का होना केवल एक ही बार होता है, जिस वजह से उस घटना की याद विशेष रूप से स्थान बना लेती है। ठीक उसी तरह आपका पहला प्यार भी है। आपका पहला प्यार हमेशा आपके साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये आपका पहला प्यार है। पहला प्यार हमेशा आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पहला ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में आपको किससे और कितना गहरा प्यार हो रहा है। हम जब भी अपने आज को देखते हैं तो हमें अपने सुनहरे कल की याद जरूर आती है। आप जीवन में हुई उन गलतियों को भी याद करते हैं और उन गलतियों को सुधारने में मदद करने वाले लोग की भी याद आती है। इन यादों में आपका पहला प्रेम भी शामिल होता है। दरअसल पहला प्रेमी आपकी प्रेरणा होता है, जिसे आप जीवन में बहुत बार याद करते हैं। और अगर आपके जीवन में वो साथ है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता।

प्यार का कोई और विकल्प ही नहीं होता। अमूमन हर चीजों का कुछ न कुछ विकल्प मौजूद होता है, लेकिन पहले प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। युवा अवस्था के दौरान जीवन हमें जहां भी ले जाता है, हम वहां चले जाते हैं। इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अक्सर पहला प्यार भी युवा प्यार होता है। छोटी उम्र में हम परिवार की गतिविधियों में बंधे होते हैं। परिवार के द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं। लेकिन प्यार में हम अपने से निर्णय लेते हैं। पहले प्यार के दौरान हमें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि ये ईमानदारी से विकसित होता है। लेकिन पहले प्यार के बाद हम किसी भी बात के रिश्ते में स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपने पहले प्यार की याद जरूर आती है। इसके साथ ही करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दे देंगे। आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9416013010। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोफोरी।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। फौजी भाइयों के लिए पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में कुछ फौजी भाइयों का अनुरोध था कि हम अपनी बटालियन में, अपनी यूनिट में फौजियों की मर्दाना आवाजें तो सुनते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी जो महिलाओं की आवाज सुनने की इच्छा है ना, वो पूरी हो सके। तो उनके अनुरोध को सिर माथे पर रखते हुए इस बार हमने कार्यक्रम में सभी गीत महिला गायिकाओं द्वारा ही गाए गए हैं, वो रखे हैं। फौजी भाइयों, जब आप सरहदों पर जाते हो तो सच में सर पर कफन बांध कर जाते हो, और कई बार कुछ फौजी भाई वहीं शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम इतिहास से मिट जाता हो, अरे वो तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आने वाली नस्लों तक में उनकी हस्ती की खुशबू सदियों तक महकती रहती है, और फिजाओं में उनकी रूह की आवाज़ गूंजती रहती है और कहती है।

आपके लिए फौजी भाइयों मौसम तो कोई मायने ही नहीं रखता। गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, आप अपने कर्तव्य को लेकर हर पल डटे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से जहां दुश्मन के प्राण सूख जाते हैं ना, वहीं आपके अपने किसी खुशगवार मौसम में परवरदिगार से दुआ कर रहे होते हैं कि

लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको तो बस अपने वतन की मिट्टी से किया गया वायदा ही याद रहता है, और आप उनको भी याद दिला देते हैं कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा लेकिन वतन के बिना नहीं चलेगा। आप तो यहां तक भी कह देते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी, और उनकी जो बात होती है ना वो मन की बात मन ही मन में रह जाती है, और हार कर उनको भी यही कहना पड़ता है कि

भाई आपने तो कहकर दिल हल्का कर लिया, अब उनका क्या करें जिनकी दुनिया ही आप हो, जिन्होंने दिल के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखा है। वो जमाने से शिकायत करते हैं कि हमने दिल ही क्यों लगाया, लेकिन फौजी भाइयों उनके त्याग और समर्पण को भी अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ऊपर वाले से बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले हमारे इस सवाल का जवाब तो दे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। खैर, वक्त आने पर छुट्टी की अर्जी भी मंजूर हो जाती है, और जब पता लगता है ना कि अब छुट्टी पर जाना है, तब आपका मन भी बच्चों से फुदकने लगता है। मिलन और जुदाई, इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना, वो काटने से भी नहीं कटता। यूनिट से घर तक का सफर ऐसा लगता है हजारों मील का हो गया हो। एक एक पल पहाड़ सा महसूस होता है। दिल कहता है कि काश

छुट्टी पर आने के बाद काम तो बहुत से होते हैं भाई, घर की मरम्मत करवानी है, बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और गुड़िया के लिए रिश्ता भी तलाश करना है। भागदौड़ में तेजी से समय गुजरने लगता है। बड़ी मुश्किल से मौका निकाल कर कुछ पल जो उनके पास बैठते हैं ना, तो उनका कहना होता है कि

लेकिन आप तो अपने दायित्व को भलीभांति जानते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बहुत से काम रह भी जाते हैं। आप अपने दिल को दिलासा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी पर आऊंगा तो बाकी के काम कर लूंगा। आपने तो दिल को समझा लिया, लेकिन वो क्या करें जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जिनको पहले में बैठकर कंधे पर सर रखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी जुबान चुप रहती है, पर जानते हैं दिल क्या कह रहा होता है। उनका दिल उनकी जुबान से कह रहा होता है कि

आप उनको भी समझाते हो कि पगली कोई बात नहीं, नौकरी है, इस तरह जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही गुजारा होता है, कोई घर संभाल लेता है तो कोई सरहद, हम दोनों मिलकर ही गृहस्थी का पहिया चलाते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे जीवन में एक दिया है, एक बाती है, और हमारा वतन हमारा तेल है। अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, इसीलिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भर के रेत की हवा में उछाल दी।

0: और देखते ही देखते छुट्टी के दिन हवा के झोंकों की तरह निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीतों के साथ साथ आपका मनोरंजन तो करूं ही, साथ ही आपके और उनके दिलों पर दस्तक दे सकूं और वो बातें करूं और सुनाऊं जो सच में आपके साथ बीतती हैं। आपका दिल जिन बातों को किसी को बता नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे आपका वापस जाने का वक्त भी आने लगता है। अब तो समय भी बैरी हो जाता है। नमुआ किस तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। अब तो वो भी हल्की जुबान से कहने लगे हैं कि हमें भी ले चलिए ना, वहीं पर हम क्वार्टर लेकर रह लेंगे। कम से कम सरहद पर ना सही, घर पर रूम पर तो आपका साथ दे ही सकते हैं ना। और वो बार बार कहते हैं
1: उस पथ

हो, मैं बातों की रवानगी में ना वक्त की बंदिशों को ही भूल गया। आपकी भावनाओं ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। मैंने भी बहुत कुछ कहना था, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अब अपने रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम के अगले भाग में। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, ये कैसा लगता है हमें हमारे नंबर 7056413010 एक बार पुनः आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056413010 पर जरूर बताएं। और तब तक के लिए तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

मन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

के बिताल दो घड़ी की जवानी है, हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिताल दो घड़ी की जवानी है, और जीने वाले होर भोले भाले सोना।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

तो बोजान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें, ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है, शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर अनु। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक सुपर हीरो होता है, बस उसकी कोई कैप नहीं होती, कोई मास्क नहीं होता। वो सुपर हीरो होते हैं हमारे पापा। याद कीजिए वो बचपन के दिन, जब अंधेरे कमरे में डर लगता था और बस एक आवाज आती थी, मैं यही हूँ, डरो मत। उस एक वाक्य में जो सुकून था, वो शायद दुनिया की किसी भी दवा में नहीं। पापा का हाथ थामकर चलना और लगना जैसे कुछ भी हो जाए, कुछ बिगड़ेगा नहीं। यही तो है वो भरोसा जो सिर्फ पापा ही दे सकते हैं। पापा वो होते हैं जो अपनी पुरानी घड़ी पहनते हैं ताकि हमें नई साइकिल मिल सके, जो अपनी चप्पल घिस जाने दे पर हमारे जूते नए और अच्छे हों, जो खुद बारिश में भीग जाएं पर हमारे सिर पर छाता तान दे। ये त्याग वो कभी शब्द में नहीं कह

दोस्तों जरा सोचिए उस पल के बारे में जब पापा पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं। उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी की प्राथमिकता बदल जाती है, अपने शौक पीछे छूट जाते हैं, अपनी नापसंद को तो जैसे भूल ही जाते हैं और बस एक ही लक्ष्य रह जाता है, इस छोटी सी जान को हर खुशी देना, स्कूल की फीस के लिए ओवर टाइम करना, बच्चों की पसंदीदा चीज के लिए अपना बजट कम करना, ये सब पापा बिना किसी शिकायत

एक बाप की सबसे बड़ी दौलत पता है क्या होती है? वो होती है अपने बच्चों की मुस्कुराहट। एक बाप की सबसे बड़ी जीत पता है क्या होती है? वो होती है जब उनका बच्चा किसी काबिल बन जाता है। और एक बाप का सबसे बड़ा सुकून होता है कि उनके जाने के बाद भी उनके बच्चे उतनी ही मजबूती से खड़े रह सके जितना उन्होंने उन्हें सिखाया है। पापा कभी ये नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर उनकी हर सुबह जल्दी उठकर टिफिन बनाना, हर महीने की फीस का इंतजाम करना, हर बीमारी में रात रात भर जागना, यही तो उनकी जुबान है प्यार जताने की। वो डांटते हैं तो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कभी गलतियां दोहराएं ना। वो सख्त होते हैं तो इसलिए क्योंकि दुनिया उनसे भी ज्यादा सख्त है। वो चाहते हैं कि हम उसके लिए तैयार रहें। एक और बात जो शायद हम अक्सर भूल जाते हैं, पापा भी कभी थकते हैं, पापा भी कभी टूटते हैं, पापा को भी कभी सहारे की जरूरत होती है, पर हमारे सामने वो हमेशा मजबूत बन के खड़े रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कमजोरी हमारी हिम्मत

जब हम बीमार होते हैं तो पापा रात रात भर जागकर हमारा ख्याल रखते हैं, पर खुद बीमार पड़ जाए तो कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ठीक हूं मैं, ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो याद कीजिए वो दिन आपने कोई नया कदम उठाने का फैसला किया था, चाहे वो नई नौकरी हो, नया शहर हो या कोई नया सपना। शुरुआत में शायद घर में थोड़ी बहस भी हुई हो, पापा ने शायद डांटा भी हो, पर जब आप निकलने लगे तो वही पापा कुछ देर पहले नाराज थे, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और हाथ में रखते हुए बोले, रख ले, जरूरत पड़ेगी। यही तो है हमारे पापा, बाहर से सख्त, अंदर से मोम जैसे नरम।

आज बस इतना कीजिए दोस्तों, पापा के पास जाइए और उनका हाथ थामिए और कहिए, पापा आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। थैंक यू सो मच इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए। शायद वो मुस्कुराकर टाल दे, कह दे पागल है क्या, पर अंदर ही अंदर उनका दिल खुशी से भर जाएगा। अगर वो दूर है तो बस एक फोन कीजिए, उनकी आवाज सुनिए और पूछिए, पापा आपने खाना खाया। इतना छोटा सा सवाल भी उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आखिर में पापा को भी बस इतना ही चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और ये एहसास कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई शायद पैसों में ना नापी जा सके, पर उनके बच्चों की सफलता और खुशी में जरूर नापी जा सकती है। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, उस बरगद के पेड़ को जो खुद तपकर भी हमें ठंडी छाव देता रहा, उस मजबूत हाथ को जिसने कभी हमें गिरने नहीं दिया, और उस प्यार को जो शब्दों का मोहताज कभी था ही नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ, जहां हर बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता को प्यार दीजिए, और हाँ आज उन्हें एक बार गले जरूर लगाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: हर मोड़ पा हंसी खुशी और मीठे मीठे सुरा की तान सीधे थारे दिल पा चोट मारेगी। यो सै रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पा जिंदगी का सांझा साथी थारे जी का सच्चा आधार। बस गेल बने रहो और जिंदगी के पूरे मजे लो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके 90.0 मेगा।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया है।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 ओमेगा हर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अन्नु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। गन्ने की 3 नई किस्में तैयार, अगले वर्ष तक उपलब्ध होंगी। 1 एकड़ में 550 से 700 क्विंटल उत्पादन। किस्मों के विकास के दौरान पैदावार, गुणवत्ता व फसल की मजबूती पर काम हुआ। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने गन्ने की 3 नई किस्में तैयार की हैं। COH 195, COH 204, COH 205 को किसानों की जरूरत और क्षेत्र की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। तीनों प्रजातियों का फाइनल ट्रायल चल रहा है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर अगले साल इन किस्मों को किसानों के लिए रिलीज करने की तैयारी है। नई किस्मों के आने से प्रदेश में गन्ना किसानों को उत्पादन बढ़ाने के साथ बेहतर गुणवत्ता वाली फसल का विकल्प मिलेगा। वैज्ञानिकों ने इन किस्मों के विकास के दौरान पैदावार, गन्ने की गुणवत्ता और फसल की मजबूती पर भी काम किया है। ऐसी प्रजातियां तैयार करने का प्रयास किया है जो खेत में बेहतर प्रदर्शन व किसानों के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हों। नई किस्मों में चीनी की रिकवरी अधिक मिलने की संभावना है। इससे गन्ना उत्पादकों को फसल की गुणवत्ता के लिहाज से भी लाभ मिल सकता है। तीनों किस्मों की प्रकृति अलग अलग रखी गई है जो किसानों को क्षेत्र व उपलब्ध समय के अनुसार विकल्प मिल सके। COH 195, COH 204 मध्य पछेती श्रेणी में रखी गई हैं, जबकि COH 205 अगेती किस्म है। इससे गन्ने की फसल के प्रबंधन और कटाई की अवधि को लेकर किसानों के पास अलग अलग विकल्प उपलब्ध होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी नई किस्म को किसानों तक पहुंचाने से पहले उसका विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण जरूरी होता है। गन्ने की 3 नई किस्मों का फाइनल ट्रायल चल रहा है। इसमें उत्पादन क्षमता के साथ चीनी रिकवरी, रोग प्रतिरोधकता और मजबूत जड़ तंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कहा है डॉक्टर सुधीर शर्मा, वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। किसानों को गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने का विकल्प मिलेगा। नई किस्मों में सबसे प्रमुख आकर्षण इनकी उत्पादन क्षमता है। COH 195 से 600 से 650 क्विंटल, COH 204 से 650 से 700 क्विंटल और COH 205 से 550 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाने का विकल्प मिलेगा। 3 सीजन में कर सकेंगे बिजाई। वैज्ञानिकों ने तीनों किस्मों को अलग अलग अवधि के हिसाब से विकसित किया है। गन्ने की बिजाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 अप्रैल से 15 मई के बीच की जा सकती है। COH 195 व 204 मध्य पछेती, जबकि COH 205 अगेती किस्म है। रोग प्रतिरोधी मजबूत जड़ें। नई किस्मों में सिर्फ पैदावार पर ही जोर नहीं दिया गया है, इसमें चीनी

मिल रहा है। बागवानी विभाग के सर्वे में सोनीपत के पल्लड़ी कला और नत्थूपुर में गोभी की फसल में रोग के लक्षण दिखे हैं। प्रदेश में 15,000 हेक्टेयर में बंद गोभी उगाई जाती है, 3.29 लाख MT उत्पादन होता है, 28,000 हेक्टेयर में फूल गोभी लगी है, 5.97 MT उत्पादन होगा। पानीपत, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जींद, सोनीपत, कैथल जिलों में गोभी लगाई जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषक डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि गोभी फसल तब काटी जाती है जब गांठ 5 से 7.5 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है। 2 से 250 ग्राम के वजन की गांठें नरम व रेशा रहित होती हैं। फूल गोभी, बंद गोभी व गांठ गोभी के रोग लक्षण व हानिकारक कीड़ों की निगरानी व समयबद्ध उपचार से बेहतर उत्पादन हो सकता है। फिलहाल संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करने की सलाह दी गई है। रोग की रोकथाम और सावधानियां। पत्तों की नसें काली पड़ जाती हैं, सूखकर गिर जाते हैं, गोभी काली पड़ जाती है। फिलहाल संक्रमित पत्तियों को नष्ट करें। बीज ऐसे क्षेत्र में प्राप्त करें जो जीवाणु रोग व पौध रोग रहित हो। बिजाई से पहले कैप्टान या थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करें। फसल पर 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर तथा 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 1 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करें। फसल कटाई के बाद बची हुई बीमारी वाले कूड़े कचरे के ढेर को जलाकर नष्ट करें। गोभी में ये बीमारी भी सामने आती है, डायमंड बैक मोथ। यह हरे रंग का छोटा कीट है। इसकी छोटी सुंडियां पत्तियों को खुरचकर खाती हैं, सफेद झिल्ली छोड़ देती है, बड़ी सुंडियां खुराक बनाती हैं। 400 ग्राम बैसिलस थियोरिन जीएसिस बायोस्प 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। तंबाकू की सुंडी। इसकी छोटी सुंडियां एक जगह इकट्ठी रहती हैं, बड़ी होने पर सारे खेत में फैल जाती हैं। प्रकोप सितंबर से नवंबर तक रहता है। रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें। 10 दिन बाद अगला छिड़काव करें। मल्टी लेयर फार्मिंग, एक साथ 4 फसलें लेकर आय बढ़ा रहे किसान। 31 अक्टूबर तक मूली, गाजर, शलगम, पालक व मेथी लगाने की सलाह। खेती में लागत कम करने, मुनाफा बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना समय की मांग है। अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर किसान मल्टी लेयर फार्मिंग यानी बहुस्तरीय खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर कमल सैनी DHO करनाल के अनुसार इस वैज्ञानिक तकनीक में किसान एक ही समय पर एक खेत में 3 से 4 अलग अलग फसलें एक साथ उगाते हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि कम जमीन और सीमित संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होता है, जिससे उत्पादन और कमाई दोनों बढ़ते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए ढांचा तैयार करना पूरी तरह से वैज्ञानिक गणित पर आधारित है। खेत में सबसे पहले 8 से 10 फीट लंबे बांस गाड़े जाते हैं। इन बांसों को लोहे के मजबूत तार से जोड़कर एक जाल बनाया जाता है। जाल के ऊपर हल्की घास या जाली डाली जाती है ताकि सूरज की सीधी धूप खेत में ना आए व छान कर पहुँचे। ढांचा ऐसे डिजाइन किया है कि पौधों की 4 परतें बन सकें। सबसे नीचे जड़ वाली फसल, ऊपर सतह वाली फसल, फिर सतह और मचान के बीच मध्य ऊंचाई वाले पौधे और सबसे ऊपर मचान पर बेल वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। किसान 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सीधे खेत में मूली, गाजर, शलगम, पालक और मेथी की बुवाई करें। वहीं टमाटर, बैंगन या मिर्ची की 25 से 30 दिन पुरानी पनीरी नर्सरी की इस समय मुख्य खेत में रोपाई करें, जो कि अगस्त के अंत में तैयार हो जाती है। सतह पर पालक मेथी उगाएं व मचान पर लौकी की बेल चढ़ाएं। मूली, शलगम 45 से 50 दिन में बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। गाजर को तैयार होने में 80 से 90 दिन लगते हैं। सतह पर पालक मेथी उगाई जाती है,
ये मात्र 30 से 40

दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जमीन की सतह ऊपर मचान के बीच की मध्य ऊंचाई पर लगाई गई टमाटर, बैंगन या मिर्च की पनीरी से 60 से 70 दिन में पैदावार मिलनी शुरू हो जाती है। मचान पर लौकी या बेल वाली मटर चढ़ाई जाती है जो 60 से 65 दिन में तैयार होती है। सर्दियों में पाले का असर कम होता है व बीजों का 100% अंकुरण सुनिश्चित होता है। जड़ों की गहराई और पानी की बचत का विज्ञान। इस तकनीक का वैज्ञानिक फायदा यह है कि हर फसल की जड़ें मिट्टी में अलग अलग गहराई तक जाती हैं। इससे मिट्टी के किसी एक पोषक तत्व की कमी नहीं होती। जब एक ही खेत में चार फसलें होती हैं, तो सिंचाई के लिए पानी का पूरा इस्तेमाल होता है व लगभग 70% तक पानी की बचत होती है। मचान की वजह से वाष्पीकरण कम होता है। खेत में खाली जगह ना रहने से खरपतवार नहीं उगते। इससे निराई गुड़ाई का खर्च बचता है। एक एकड़ जमीन में इससे किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC ST, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: जी, अरे कौन जी बोला है जी?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम। मन्नू भाई।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बाद बड़ी सिंबल।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कह

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग

0: योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
1: तो दोस्तों ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस टी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: अभी अलविदा मत कहो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगा हर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अनु। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक सुपर हीरो होता है, बस उसकी कोई कैप नहीं होती, कोई मास्क नहीं होता। वो सुपर हीरो होते हैं हमारे पापा। याद कीजिए वो बचपन के दिन, जब अंधेरे कमरे में डर लगता था और बस एक आवाज आती थी, मैं यही हूँ, डरो मत। उस एक वाक्य में जो सुकून था, वो शायद दुनिया की किसी भी दवा में नहीं। पापा का हाथ थामकर चलना और लगना, जैसे कुछ भी हो जाए कुछ बिगड़ेगा नहीं, यही तो है वो भरोसा जो सिर्फ पापा ही दे सकते हैं। पापा वो होते हैं जो अपनी पुरानी घड़ी पहनते हैं ताकि हमें नई साइकिल मिल सके, जो अपनी चप्पल घिस जाने दे पर हमारे जूते नए और अच्छे हों, जो खुद बारिश में भीग जाएं पर हमारे सिर पर छाता तान दे। ये त्याग वो कभी शब्द

दोस्तों जरा सोचिए उस पल के बारे में जब पापा पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं। उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी की प्राथमिकता बदल जाती है, अपने शौक पीछे छूट जाते हैं, अपनी नापसंद को तो जैसे भूल ही जाते हैं और बस एक ही लक्ष्य रह जाता है, इस छोटी सी जान को हर खुशी देना। स्कूल की फीस के लिए ओवर टाइम करना, बच्चों की पसंदीदा चीज के लिए अपना बजट कम करना, ये सब पापा बिना किसी शिकायत

एक बाप की सबसे बड़ी दौलत पता है क्या होती है? वो होती है अपने बच्चों की मुस्कुराहट। एक बाप की सबसे बड़ी जीत पता है क्या होती है? वो होती है जब उनका बच्चा किसी काबिल बन जाता है। और एक बाप का सबसे बड़ा सुकून होता है कि उनके जाने के बाद भी उनके बच्चे उतनी ही मजबूती से खड़े रह सके जितना उन्होंने उन्हें सिखाया है। पापा कभी ये नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर उनकी हर सुबह जल्दी उठकर टिफिन बनाना, हर महीने की फीस का इंतजाम करना, हर बीमारी में रात रात भर जागना, यही तो उनकी जुबान है प्यार जताने की। वो डांटते हैं तो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कभी गलतियां दोहराएं ना। वो सख्त होते हैं तो इसलिए क्योंकि दुनिया उनसे भी ज्यादा सख्त है। वो चाहते हैं कि हम उसके लिए तैयार रहें। एक और बात जो शायद हम अक्सर भूल जाते हैं, पापा भी कभी थकते हैं, पापा भी कभी टूटते हैं, पापा को भी कभी सहारे की जरूरत होती है, पर हमारे सामने वो हमेशा मजबूत बन के खड़े रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कमजोरी हमारी हिम्मत

जब हम बीमार होते हैं तो पापा रात रात भर जागकर हमारा ख्याल रखते हैं, पर खुद बीमार पड़ जाए तो कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो याद कीजिए वो दिन आपने कोई नया कदम उठाने का फैसला किया था, चाहे वो नई नौकरी हो, नया शहर हो या कोई नया सपना। शुरुआत में शायद घर में थोड़ी बहस भी हुई हो, पापा ने शायद डांटा भी हो, पर जब आप निकलने लगे तो वही पापा कुछ देर पहले नाराज थे, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और हाथ में रखते हुए बोले, रख ले, जरूरत पड़ेगी। यही तो है हमारे पापा, बाहर से सख्त, अंदर से मोम जैसे नरम।

आज बस इतना कीजिए दोस्तों, पापा के पास जाइए और उनका हाथ थामिए और कहिए, पापा आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। थैंक यू सो मच इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए। शायद वो मुस्कुराकर टाल दे, कह दे पागल है क्या, पर अंदर ही अंदर उनका दिल खुशी से भर जाएगा। अगर वो दूर हैं तो बस एक फोन कीजिए, उनकी आवाज सुनिए और पूछिए, पापा आपने खाना खाया। इतना छोटा सा सवाल भी उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आखिर में पापा को भी बस इतना ही चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और ये एहसास कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई शायद पैसों में ना नापी जा सके, पर उनके बच्चों की सफलता और खुशी में जरूर नापी जा सकती है। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, उस बरगद के पेड़ को जो खुद तपकर भी हमें ठंडी छाव देता रहा, उस मजबूत हाथ को जिसने कभी हमें गिरने नहीं दिया, और उस प्यार को जो शब्दों का मोहताज कभी था ही नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ, जहां हर बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता को प्यार दीजिए, और हाँ आज उन्हें एक बार गले जरूर लगाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल्ला कल्ला।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star. Hum Safar Zindagi Ka.
1: सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अनु। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक सुपर हीरो होता है, बस उसकी कोई कैप नहीं होती, कोई मास्क नहीं होता। वो सुपर हीरो होते हैं हमारे पापा। याद कीजिए वो बचपन के दिन, जब अंधेरे कमरे में डर लगता था और बस एक आवाज आती थी, मैं यही हूँ, डरो मत। उस एक वाक्य में जो सुकून था, वो शायद दुनिया की किसी भी दवा में नहीं। पापा का हाथ थामकर चलना और लगना, जैसे कुछ भी हो जाए कुछ बिगड़ेगा नहीं, यही तो है वो भरोसा जो सिर्फ पापा ही दे सकते हैं। पापा वो होते हैं जो अपनी पुरानी घड़ी पहनते हैं ताकि हमें नई साइकिल मिल सके, जो अपनी चप्पल घिस जाने दे पर हमारे जूते नए और अच्छे हों।

अपनी नापसंद को तो जैसे भूल ही जाते हैं और बस एक ही लक्ष्य रह जाता है, इस छोटी सी जान को हर खुशी देना। स्कूल की फीस के लिए ओवर टाइम करना, बच्चों की पसंदीदा चीज के लिए अपना बजट कम करना, ये सब पापा बिना किसी

एक बाप की सबसे बड़ी दौलत पता है क्या होती है? वो होती है अपने बच्चों की मुस्कुराहट। एक बाप की सबसे बड़ी जीत पता है क्या होती है? वो होती है जब उनका बच्चा किसी काबिल बन जाता है। और एक बाप का सबसे बड़ा सुकून होता है कि उनके जाने के बाद भी उनके बच्चे उतनी ही मजबूती से खड़े रह सके जितना उन्होंने उन्हें सिखाया है। पापा कभी ये नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर उनकी हर सुबह जल्दी उठकर टिफिन बनाना, हर महीने की फीस का इंतजाम करना, हर बीमारी में रात रात भर जागना, यही तो उनकी जुबान है प्यार जताने की। वो डांटते हैं तो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कभी गलतियां दोहराएं ना। वो सख्त होते हैं तो इसलिए क्योंकि दुनिया उनसे भी ज्यादा सख्त है। वो चाहते हैं कि हम उसके लिए तैयार रहें। एक और बात जो शायद हम अक्सर भूल जाते हैं, पापा भी कभी थकते हैं, पापा भी कभी टूटते हैं, पापा को भी कभी सहारे की जरूरत होती है, पर हमारे सामने वो हमेशा मजबूत बन के खड़े रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कमजोरी हमारी हिम्मत

जब हम बीमार होते हैं तो पापा रात रात भर जागकर हमारा ख्याल रखते हैं, पर खुद बीमार पड़ जाए तो कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो याद कीजिए वो दिन आपने कोई नया कदम उठाने का फैसला किया था, चाहे वो नई नौकरी हो, नया शहर हो या कोई नया सपना। शुरुआत में शायद घर में थोड़ी बहस भी हुई हो, पापा ने शायद डांटा भी हो, पर जब आप निकलने लगे तो वही पापा कुछ देर पहले नाराज थे, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और हाथ में रखते हुए बोले, रख ले, जरूरत पड़ेगी। यही तो है हमारे पापा, बाहर से सख्त, अंदर से मोम जैसे नरम।

आज बस इतना कीजिए दोस्तों, पापा के पास जाइए और उनका हाथ थामिए और कहिए, पापा आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, थैंक यू सो मच इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए। शायद वो मुस्कुराकर टाल दे, कह दे पागल है क्या, पर अंदर ही अंदर उनका दिल खुशी से भर जाएगा। अगर वो दूर है तो बस एक फोन कीजिए, उनकी आवाज सुनिए और पूछिए, पापा आपने खाना खाया। इतना छोटा सा सवाल भी उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आखिर में पापा को भी बस इतना ही चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और ये एहसास कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई शायद पैसों में ना नापी जा सके, पर उनके बच्चों की सफलता और खुशी में जरूर नापी जा सकती है। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, उस बरगद के पेड़ को जो खुद तपकर भी हमें ठंडी छाव देता रहा, उस मजबूत हाथ को जिसने कभी हमें गिरने नहीं दिया, और उस प्यार को जो शब्दों का मोहताज कभी था ही नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ, जहां हर बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता को प्यार दीजिए, और हाँ आज उन्हें एक बार गले जरूर लगाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। प्रस्तुत करेंगे राहुल अलियान, स्क्रिप्ट निया जैन का, एडिट निर्देशन भारत सोपोरी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7 और आज हमने चयन किया है फिल्म चलते का नाम गाड़ी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। आज हम आपको सुनाएंगे फिल्मी किस्से फिल्म चलते का नाम गाड़ी का, जो हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाई एक साथ नजर आए। ऐसा बहुत कम फिल्मों में हुआ है। इस फिल्म में तीनों भाइयों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म में मधुबाला ने भी अहम भूमिका अदा की है। फिल्म को सत्यन बोस ने निर्देशित किया था और इसका संगीत SD बर्मन ने दिया था। आप बने रहे हमारे साथ, आपको इस फिल्म के और भी फिल्मी किस्से सुनाएंगे और इसी फिल्म के मनमोहक गीत भी।
1: हम थे वो थी हम थे।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: खेचा आ हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: इस फिल्म का उद्देश्य है कि जो काम करता है वह ठीक है चाहे वह कैसे भी काम करे। यह संदर्भ संभवतः तीनों भाइयों की पुरानी घिसी पीटी कार की ओर है जो ज्यादातर खराब हो चुकी है फिर भी काम करती है। फिल्म के दूसरे गाने बाबू समझो इशारे के शूट के दौरान कैमरा पर्सन आलोक दास गुप्ता की कार से टक्कर हो गई थी। यही नहीं एक गाने के शूट के दौरान आलोक तालाब में गिर गए थे और डूबने ही वाले थे जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था।
0: बाजू

इस फिल्म के साथ ही इसके गाने भी हिट हुए थे और 5 रुपया 12 आना तो आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी कहानी है? दरअसल किशोर कुमार पर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से 5 रुपया 12 आना का उधार था, जिसको लेकर वो मस्ती में गाते थे। इस बारे में अमित कुमार ने रिवील किया था।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

इसके साथ ही मधुबाला की 1958 की लगातार चौथी बड़ी हिट फिल्म बन गई, जिसे 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शीर्ष महिला सितारे के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। फिल्म के एक गाने में मधुबाला को विलेन सज्जन प्रपोज करता है, लेकिन मधुबाला इसे कंफर्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह थी कि उन्हें लग रहा था कि उनके डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि निर्देशक बोस के समझाने के बाद आखिर में मधुबाला मान गई। इसी फिल्म के दौरान मधुबाला और किशोर कुमार की नजदीकियां भी बढ़ी और दोनों की ये नजदीकियां हाल कैसा है जनाब का के शूट के दौरान हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली।

0: अरे वाह।
1: देशन पहले बंगाली डायरेक्टर कमाल मजूमदार करने वाले थे, लेकिन मुहूर्त के 3 घंटे पहले ही उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया और वजह बताई कि वो तीनों गांगुली ब्रदर्स को लेकर हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब कमाल मजूमदार ने फिल्म से इनकार कर दिया तो किशोर कुमार सत्यन बोस के पास गए और बात बन गई। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार और अनूप कुमार को किशोर कुमार ने ही मनाया था। सिर्फ यही नहीं, फिल्म के लिए पिता की कार का कंसेप्ट भी उन्होंने ही लिखा था।
0: अजय सुना सरदारा, क्या हाल है?

फिल्म शूटिंग के दौरान किशोर कुमार ने सेट पर खूब मस्ती की और कई बार सीन में बदलाव भी किए जो बाद में फिल्म में रखे गए। ये फिल्म बहुत कम बजट में बनाई गई थी। इस फिल्म को लेकर किशोर कुमार को लगता था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। दरअसल किशोर कुमार चाहते थे कि उनकी आय कम रहे और इनकम टैक्स में घाटा दिखा सके, लेकिन इसकी कॉमेडी, संगीत और कहानी से इसे सुपरहिट बना दिया गया। किशोर कुमार द्वारा फ्लॉप होने की उम्मीद के साथ चलती का नाम गाड़ी ने बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गया और उस साल की दूसरी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाद में किशोर कुमार ने इस फिल्म के सभी अधिकार अपने सचिव अनूप शर्मा को दे दिए।

कर रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी चुप जा।

चलती का नाम गाड़ी के बारे में जिस बात का अक्सर जिक्र किया जाता वह है महिला का चित्रण। मधुबाला का किरदार एक साधारण रूप से आजाद महिला का है जो अपनी कार चलाती है और पुरुष प्रधान दुनिया में अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए अटल है। अनूप कुमार की प्रेमिका पेट्रोल पंप चलाती है। अशोक कुमार की पूर्व प्रेमिका की जबरन शादी कर दी गई थी, लेकिन जब वे 10 साल बाद मिलते हैं तो वे उसे वापस लेने के बारे में दोबारा नहीं सोचता। 1950 के दशक या वास्तव में 1960 या 1970 के दशक की किसी अन्य हिंदी फिल्म के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें महिला को पुरुष के समान माना गया हो और जिसमें सभी पुरुष नायक कम अंतरराष्ट्रवादी हो।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, और हम थे वो थी और समा रंगीन, जैसे गाने उस समय बहुत हिट हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। और साथ ही यह फिल्म चलती का नाम गाड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म है, जिसने अपनी छवि लोगों के मन में हमेशा के लिए छोड़ दी है।

और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त राहुल अलियान को दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नई फिल्म और फिल्मी किस्सों के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 7। आज की फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। रिकॉर्ड व प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। स्क्रिप्ट तैयार किया निया जैन ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: स्वस्थ हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल हेल्थ विजन्स एम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को हमेशा स्वास्थ्य लाभ मिले इस श्रृंखला में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मित्तल अंबाला से, जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वे हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। डॉक्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।
0: आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के लक्षण के हो सकती है?
1: भरत जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के या लक्षण के हो सकती है। आजकल जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि जवान लोग सड़क पे चलते हुए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम सडन कार्डिक डेथ बोलते हैं, SCD। आजकल हो ये रहा है कि बेसिकली हम इसमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम होते हैं। एक है खून की नलकियों का सिस्टम, जिसमें खून का प्रवाह होता है। तो अगर इन नलकियों में ब्लॉकेज आए, उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरा होता है करंट का सिस्टम। हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वायरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, वायरिंग एकदम से अचानक से रुक जाए, इसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो आज हमारे पास दो तरीके की बीमारी होती है। एक तो होती है खून की नलकियों की बीमारी, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, और दूसरी होती है करंट के सिस्टम की बीमारी, जिसमें हो जाते हैं कार्डिक अरेस्ट, अरिथमियाज, मतलब ध्वनि की समस्या है, रिदम डिस्टर्बेंसेस। आजकल के जमाने में जिस तरीके का स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, उसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है। इसके कुछ हिंट्स मिल जाते हैं हमें। अगर परिवार में बहुत ज्यादा किसी को, परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता या भाई बहन या दादा दादी, किसी को अचानक मृत्यु हुई हो किसी के परिवार में, या फिर मरीज कोई अचानक से बेहोश हो गया हो कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो, या फिर कुछ नए लक्षण आए जैसे सीने में दर्द, मेहनत करने पे छाती में जकड़न, भारीपन, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जीवन में, तब मरीज को इन सब का टेस्ट कराना चाहिए आगे ना। मरीज को अपने परिवार की हिस्ट्री देखनी है। जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज आता है, हम उसकी उम्र देखते हैं। कोई भी भारतीय पुरुष 35 या 40 से उम्र ज्यादा, औरत 50 के बाद, जब उनकी मेंसेस रुक जाती है उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। तो इन तीन चीजों को हम बदल नहीं सकते, भारतीय होना, पुरुष होना या औरत होना, और उम्र। जो चीजें बदल सकती है वो होती है शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी के भी परिवार में 55 से कम में पुरुष को हार्ट अटैक, 65 से कम में औरत को हार्ट अटैक, मोटापा और बहुत स्ट्रेस, अगर ये सब चीजों में से कुछ भी है तो पेशेंट को अपना टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर पेशेंट डेली वॉक करने जाता है, चलता फिरता है, और उसको अचानक से लगता है कि आज मैं चल नहीं पा रहा, आज मुझे चलने फिरने में सीने में जकड़न, भारीपन लग रहा है, या जलन लग रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ आज तक, और रुकने पे आराम आ रहा है, या सांस फूल रहा है, या थकान हो रही है, या धड़कन तेज हो रही है, ये चार लक्षण, तब मरीज को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल से जुड़ा कौन सा लक्षण लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा सवाल। बहुत कॉमनली क्या होता है कि लोगों को लगता है एसिडिटी होती है, तो पीपल ऑलवेज थिंक, उनको लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये एसिड का लक्षण है। आजकल देखा गया है कि एक तो औरतों में, दूसरा डायबिटिक लोगों में छाती में दर्द नहीं होता, छाती में जलन होती है, और थोड़ा छाती भी क्या, छाती से नाभि से ऊपर पेट में जलन होना, एसिडिटी की दवाई के बाद आराम ना मिलना, कई बार दस्त लग जाते, ये लक्षण लोकल डॉक्टर गैस की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये एक MI हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, इनमें एक ECG जरूर होनी चाहिए। तो बाकी थोड़ा बहुत सांस फूलना, धड़कन तेज

0: रूस पेशेंट आधा ही किलोमीटर चलते ही चलते हैं, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अब अचानक से उसको लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा आज, मुझे आज चलने में कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंट है आज, तो उसको इमीडिएटली इवैल्यूएशन की जरूरत है पेशेंट को।
1: आपसे अगला प्रश्न करता हूँ, तनाव हमारे दिल को चुपके से किस तरह नुकसान पहुंचाता है?
0: आज के जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, मैं इनफैक्ट इस पे बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगा। आजकल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हमारे मन में चिंता है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो होता ये है कि जब भी हमको स्ट्रेस होता है, भगवान ने हमको इस तरीके से बनाया है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम है, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए हम जी घबरा जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी और मैं भूख आवाज उस जगह से, ऐसा इसलिए होता है जैसे तेज तेज धड़के खून की सप्लाई बढ़ जाए मसल्स तक और मैं भाग सकूं। अगर किसी मरीज को जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस हो रहा है, किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी का इशू है, कोई भी दिक्कत है, इनसे हमारा थोड़ा थोड़ा बीपी पल्स बढ़ते रहता है बार बार, जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है, हार्ट में रीमॉडलिंग करता है। सारा खेल हमारी खून की नलकियों का है, खून की नलकियों के अंदर एक चमड़ी होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम अगर हेल्दी नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है स्ट्रेस, अगर बीपी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, पेशेंट स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा, रात को नींद खुल रही है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट का स्टाइल बढ़ जाता है किसी की वजह से। प्लस हार्ट में अगर माइनर ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज रप्चर कर जाते हैं, इसे बोलते हैं प्लाक रप्चर, जिसे अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज, जो हमारी एंडोथेलियम है वो अनहेल्दी हो जाती है, उस कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो नुकसान करता है। चौथी चीज, प्लेटलेट, जो प्लेटें होती है जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और खून गाढ़ा हो जाता है इस केस में, जैसे जो जिम जाते हैं ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं बॉडी को, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, अचानक से जो जिम नहीं जाता, दोस्तों को देखे जिम जाना शुरू हुआ और वहां जाके 100-200 किलो उठा लिया, तो ये एकदम से बॉडी पे इतना स्ट्रेस पड़ गया जो जरूरी नहीं था उसको देना, तभी पेशेंट की अचानक मृत्यु हो सकती है।
1: अगर किसी व्यक्ति को दिल में तकलीफ महसूस हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
0: सर, पेशेंट को इमीडिएटली अगर फील हो कि उसको छाती में जकड़न या भारीपन महसूस हो, इसमें हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं कि पेशेंट को एक पॉइंट पे दर्द नहीं होना चाहिए। कोई पेशेंट बोलता है सर मुझे गहरा सांस लेने में एक पॉइंट पे चुभन हो रही है, ये हार्ट का दर्द नहीं है। अगर पूरी पूरी छाती में डिफ्यूज, छाती में राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, जो कंधों में जाए, जो जबड़े में जाए, जकड़न, भारीपन, जलन या दर्द और सांस फूलना, घबराहट होना कि जैसे आज कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और ज्यादा घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, चिंता उसको मारेगी उस समय, उसे आराम से ऑटो के जहाँ पे भी वो है साथ में हेल्प के लिए बुला ले किसी को, और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच के उसके वाइटल देखने चाहिए, बीपी पल्स, और एक इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए जो हमें काफी गाइड कर देता है। बट ये 61 साल के आदमी में हो रही है, जिसको शुगर है, बीपी है, जो स्मोक कर रहे हैं, बड़े अंकल है जिनके पिताजी को भी हार्ट अटैक आया था, मैं घबराऊंगा, तब पेशेंट को इमीडिएटली भागना चाहिए डॉक्टर के पास, ईसीजी करानी चाहिए उस समय।
1: अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: जी, मैं श्रोताओं को आपके द्वारा बताना चाहूंगा, मैं कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। अगर आप लोगों की उम्र 31-40 साल से ज्यादा है और आप पुरुष है और औरतें 50 के बाद, ऊपर से शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, माता पिता, भाई बहन, दादा चाचा, ताऊ के लड़के, कजन्स में, परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक्स हुए हो, किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, आप थोड़े मोटे हैं और आप कम चलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। हर 4 से 6 महीने अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर का जांच करना चाहिए, ये 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो आखिरी बात मैं बताऊंगा, कुछ चीजें भगवान पे छोड़नी है, हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है। आजकल दुनिया परेशान, सब लोग बहुत परेशान है, और शांति रखिए जीवन में और खुश रहिए अपने परिवार में, मतलब है ना
1: जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो विदस्ता के साथ जुड़े और आपने हमारी श्रोताओं के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर ये सारी जानकारी दे दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तप कर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

जल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

फरिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की।

झील जो बरसों से बस गई है, उसके सीने में जागती है तमाम रात। झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें जो मुझे न सोने देती।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

जी हाँ, श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सोहना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:45। हम प्रसारण करते हैं अंबाला छावनी से, और हम बात करते हैं अंबाला छावनी की। यह सामुदायिक रेडियो अंबाला से प्रसारण करता है और इसकी स्वीकृति मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और हम हर दिन कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अंबाला के लोगों, अंबाला के श्रोताओं तक पहुंचे और उनके दिल तक दस्तक दें। तो दोस्तों, आज का ये दिन और आज की ये महफिल भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। जिस तरह एक चिट्ठी मंजिल तक पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करती है, वैसे ही हमारा ये प्रसारण भी आज अपने सफर के आखिरी मोड पर आ चुका है। उम्मीद है कि ये वक्त आपके लिए यादगार रहा होगा। दोस्तों, आज का दिन एक खास वजह से भी महत्वपूर्ण है। आज है राष्ट्रीय डाक दिवस। हर साल 10 अक्टूबर को यह दिन भारतीय डाक विभाग के अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, और यह विश्व डाक दिवस के ठीक एक दिन बाद आता है। FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पूरी टीम से डाक विभाग के सभी कर्मचारियों और डाकियों को उनकी वर्षों की सेवा के लिए हार्दिक धन्यवाद और सम्मान देते हैं। अगर हम आज के समय में देखें तो आज की जो युवा पीढ़ी है, शायद उनको इसका अंदाजा नहीं होगा कि डाक सेवा का क्या असर हमारी जिंदगियों में रहा है। जब हम युवा अवस्था में थे तो हमारे पास एक ही जरिया था अपनों से जुड़ने का, वो था डाक के द्वारा चिट्ठी लिखना या टेलीग्राम लिखना, और या तार आना, जैसे हम कहते थे कि तार आ गया है। बहुत ही छोटे से शब्दों में एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती थी। तो वो भी एक समय था और आज ये भी एक समय है। आज हम सिर्फ मोबाइल के ऊपर पूरी दुनिया तक अपनी बात मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको एक और जानकारी देते हैं। आज अंबाला के सर हिंद क्लब में एक फिल्म का स्क्रीनिंग हुई। फिल्म का नाम था गली नंबर 5। इसको हमारे अंबाला के नामवर फिल्म अदाकार प्रमोद पब्बी ने बनाई थी। हमें बहुत खुशी है कि हमें उस मौके का एक हिस्सा बनने का मौका मिला, और पबी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें बुलाया। और बहुत ही उम्दा फिल्म बनी थी, जिसमें हमारी समाज में महिला की शक्ति का जो एक जो दर्शाया गया था वो ये था कि जो महिला है उसके ऊपर जो फिल्म बनी थी, बहुत ही धैर्य से अपनी जिंदगी के मुश्किलों को देख के जिंदगी में आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि जो माफ कर देता है वही सबसे बड़ा होता है। तो उम्मीद है कि ये फिल्म आपको आने वाले दिनों में अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी देखने को मिली। ये अवार्ड विनिंग फिल्म थी, और हमें खुशी है कि अंबाला में ऐसी जो आयोजन है वो हो रहे हैं, और भी वहां पे कुछ और आयोजन थे जो बहुत ही उम्दा थे। इसी अवसर पर दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक विषय पर, और आज का विषय है जुड़ाव और संपर्क बनाए रखने की कोशिश ही रिश्तों को जिंदा रखती है। एक दौर था जब चिट्ठियां ही दिलों को जोड़ती थी और बड़ा जरिया ये हुआ करता था। दूर बैठे अपनों का हाल जानने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, और जब डाकिया चिट्ठी लेकर आता था तो वो पल किसी त्योहार से कम नहीं होता था। आज भले ही तकनीक ने संपर्क को पल भर में एक दूसरे को साथ जोड़ा है, लेकिन चिट्ठियों में जो अपनापन और धैर्य था वो आज भी हमें एक सीख देता है। रिश्तों को निभाने के लिए समय और मेहनत जरूर है। डाक विभाग ने सदियों से देश के कोने कोने से आपस में जोड़े रखा, चाहे वो दूर दराज के गांव हो या बड़ा शहर। ये सेवा हमें सिखाती है कि सच्चा जुड़ाव दूरी से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और देखभाल से बनता है। आज के डिजिटल दौर में भी हमें अपने अपनों से जुड़े रहने के लिए थोड़ा समय और प्रयास जरूर निकालने चाहिए, चाहे
वो एक फोन कॉल हो या एक छोटा सा संदेश हो। तो दोस्तों आइए अब हम आज डाक विभाग के इस अमूल्य योगदान को याद करें और साथ ही अपने रिश्तों में भी वही धैर्य और अपनापन बनाए रखने का प्रयास करें जो कभी एक चिट्ठी में समाया करता था। दोस्तों ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां यूं है, कभी कागज के टुकड़े पर बसती थी सारी कहानी, कभी कागज के टुकड़े पर बसती थी सारी कहानी, दूर रहकर भी दिलों को जोड़ती थी वो कहानी, दूर रहकर भी दिलों को जोड़ती थी वो निशानी, वितस्ता भी तो हर किनारे तक संदेश पहुंचाती है, वितस्ता भी तो हर किनारे पर संदेश पहुंचाती है, यह सिखाती है जुड़ाव में ही रिश्तों की रवानी है, यह सिखाती है जुड़ाव में ही रिश्तों की रवानी है। जी हाँ दोस्तों ये थी आज की पंक्तियां और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। जाने से पहले कल के कार्यक्रमों का विवरण, कल 11 अक्टूबर 2026 रविवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत और कल से शरद नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप सभी श्रोताओं को शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे भक्ति संगीत में कल आप सुनेंगे शारदे नवरात्र के बारे में भजन और गीत। 8 बजे सुनेंगे तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कल का कार्यक्रम तैयार किया गया है फिल्म अदाकार जॉय मुखर्जी पर, पेश करेंगे रमेश मराठा। 8:30 बजे किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 20 स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव। 9:30 बजे सरगम होगा एपिसोड 2, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 10:15 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम होगा हमारे साथ होंगी संभव आजाद, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 4, हमारे साथ होंगी स्नेह लता, पेश करेंगे आरजे सेजल। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुनहरे सुनहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। और कल की कड़ी है बोलते मुजस्सम। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और मन में पुरानी यादों और अपनेपन की एक मीठी सी हलचल छोड़ गई होगी। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेते हैं आपसे विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।